0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज़
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: पार्टी में हड़बड़ इसको वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको इसको गाड़ी चाहिए लंबी म्यूजिक चाहिए
1: लाउड
0: ये जाती महंगे कम में जहाँ होता ढंका
1: ग्राउंड
0: लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट

0: आज प्यार की हो डील।
1: डील बोले तो
2: हाट हाट
3: हवा यार सौदा सौदा।
1: ओहो
0: दोनों डील कर सील
1: टाइट वेरी टाइट।

रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

नमस्कार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म बदे प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्वत 2083 साल श्रावण कृष्ण पक्ष सन् 2026 अगस्त 11 तारीख श्रावण 26 गते मंगलबार चतुर्दशी तिथि घण्टा गर्न चतुर्दशी आज अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी।

सारी छयाहुन राजा नौशकाय सारी दौलतले परिपूर्ण होस पवन जाई नै परेका घरे मन्दाकुन सबले दुर्योधन समान कर्णै समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस् सद्वात कै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस् श्री ब्रह्म ज्ञान अनि विदुर कैसरी ज्ञान होस् सुजनमा मानुन बडाले पनि कृति उज्ज्वल होस् सुत सहित।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: नमस्कार, मेरो बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने म झटक प्रसाद तिमल सिन्हा। म दुख केही दुई चारवटा भजन यसो गाउँ भनेर आएको यहाँसम्म। नमस्कार हजुर। जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पिता महादेव, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, यो लोक दुख छोड़ी जन्म सुधारौं है, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती का जय राधे राम जी का जय, आरती गरौं प्रभु आती मा तुमारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, यो लोको दुख छोड़ी जन्म सुधारे, जय गणेशा जय गणेशा जय गणेशा देव, गौरी माता पार्वती पितै महादेव, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, हरि हरि सदाई भरि भक्ति गरौं है, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन छोडेर नजाऊ होइ रुन्छ नि मेरो मन, श्री कृष्ण बलराम सुन्दर वृन्दावन